हर संकट का समाधान है गणपति, हर मनोकामना की पहचान है गणपति। आइए श्री गणेश जी की इस भजन से इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं।

माँ का नाम लेते ही मन को सुकून मिलता है और माँ की भक्ति से जीवन को नई दिशा मिलती है।

राम सिमर राम सिमर ए तेरा काज है। इस श्लोक दे विच गुरु जी फरमाउंदे ने कि परमात्मा दा नाम सिमरना चाहिदा है। परमात्मा दा नाम सिमरन दे नाल ही परमात्मा साडे हर कम्मां दे विच सहाई हुंदा है, और परमात्मा दा नाम सिमरन ही साडी जिंदगी दे विच साडे लई सब तो वध काम आउण वाली चीज़ है।

दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पहर अरादिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। बाकी उस परमात्मा का नाम दुखां का नाश करन वाला है, उस परमात्मा का नाम जड़ा आ साढ़े सारे ही दुखां नू हर लेंदा है, और गुरु का नाम सिमरन दे नाल जीवन नू सही दिशा मिलती है। दुख

भक्ति तब और गहरी हो जाती है जब मन अपने प्रभु के दर्शन के लिए तड़पने लगता है। जब भक्त का मन श्री कृष्ण के दर्शन को तरसता है, तब उसकी हर सांस नंदलाला का नाम जपती है।

लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। वाकई जेकर उस सच्चे गुरु की साढ़े ते मेहर हो जाए, उस दा मेहर परी नज़र साढ़े ते हो जाए, तो सानू लखां बादशाहियां अते दुनिया दियां सारियां खुशियां इको पल दे विच प्राप्त हो सकदियां ने। और गुरु की कृपा दे नाल दुनिया का राजभाग साढ़े लई तुच्छ है, और गुरु साढ़े लई सब तो अहम है, जो सानू इस जिंदगी दे विच सच्चे राह ते चलन दे लई प्रेरित करता है।

जिसके हाथों में सृष्टि की डोर है वही हमारे जीवन का सच्चा पालनहार है। जब हम उसकी शरण में आते हैं तो भय की जगह विश्वास और निराशा की जगह उम्मीद का जन्म होता है। तुसी सर्वन कर रहे हो भक्ति रसनाल भरपूर प्रोग्राम वंदना।

खुदा ने भी तुझे पूरी शिद्दत से बनाया है, खुदा ने भी तुझे पूरी शिद्दत से बनाया है। मैं जो देखता था ख्वाब उसे पूरा कर दिखाया है, जी रहा था जिंदगी मैं बस कजा के लिए, जी रहा था जिंदगी मैं बस कजा के लिए। तेरे प्यार ने ही तो मुझे जीना सिखाया है, मेरी हसरत थी उस खुदा से मिलने की, मेरी हसरत थी उस खुदा से मिलने की, शायद इसीलिए किस्मत ने मुझे तुझसे मिलाया है, शायद इसीलिए किस्मत ने मुझे तुमसे मिलाया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 102.7 MHz, 103.6 MHz ते थोड़े सब दा फेवरेट वाला प्रोग्राम लेके थोड़ा दोस्त आरजे ललित सोनी हाजिर हो चुके हैं जनाब। और स्टूडियो कड़ी ते इस वक्त समा 7:04:59 हो रहे ने। संडे वाली खूबसूरत मॉर्निंग दा आगाज़ हो चुका है जनाब, गुड वाली मॉर्निंग और प्यार परी सत श्री अकाल। जिथे जिथे भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जिथे जिथे भी तुसी प्रोग्राम नू सुन रहे हो, थानू दोवें हथ जोड़ के प्यार परी सत श्री अकाल। सो प्यारी जी मिठी जी मुस्कान दे नाल अज दे दिन दा आगाज़ करना है, अज दिन दी शुरुआत करनी है, क्योंकि अज है संडे वाला दिन। और संडे वाला दिन बहुत सारिया खुशियां, बहुत सारिया उम्मीदां, बहुत सारे नवे नवे चा, नवे नवे रंगा दे नाल चढ़दा है, अपने नूं मिलाउंदा है ये दिन, और अपने दे कोल बैठण दा समा लैके आउंदा ये वाला दिन। सो इस ताजगी भरी इस सजरी सवेर दे विच FM रेनबो का साथ थोड़े नाल है, और तुसी हौली हौली अज दे कम्मां दी शुरुआत करनी है, और नाल दी नाल थोड़े लिए इनफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट का पूरा पूरा ख्याल रखने की जिम्मेवारी FM रेनबो की है। थानू जानकारी दे नाल लवरेज करांगे, नाल दी नाल थानू अपडेट करांगे, और नाल दी नाल गीत संगीत दे जरिए थोड़ी रूह तक सुकून भी पहुँचाया जाएगा। सो आगाज़ करते हैं अज की इस खूबसूरत महफिल का, अज की इस सजरी सवेर का, के दी आवाज़ दे विच खूबसूरत गीत दे नाल। और मिलते हैं इस खूबसूरत गीत तो बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दियां गल्लां बातां लैके।

और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर का आनंद तुसी माणते रहोगे ठीक 8:30 बजे तक और 8:40 ते होएगा म्यूजिकली बैक टू बैक का खूबसूरत सफ़र अड्डी टप्पा और 9 बजे आगाज़ होएगा दिल अपना पंजाबी का जिथे तुसी दिल खोल के दिल दियां गल्लां कर सकते हो। सो अज दी इस संडे वाली खूबसूरत सजरी सवेर दे विच बहुत सारियां गल्लां बातां बहुत सारी इनफॉर्मेशन थोड़े लिए लैके आए। सो पहलो गल करते हैं अज दे विचार दे बारे अज दे थॉट दे बारे। सो अज दा विचार की कह रहा है कि कौन किस काबिल है ये कौन जानता है, जिसने कुछ किया ही नहीं उसे कौन पहचानता है। कौन किस काबिल है ये तो वक्त बताता है, जो वक्त की सही कदर करना सही से जानता है। सो बाकी जड़ा बंदा समय की कदर करता है और समय फिर ओदी कदर करता है, और जेकर असी समय की कदर करते हैं तो हर समस्या हर चुनौती का असी डट के सामना कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वक्त जड़ा है नूर नू बेनूर कर दिंदा है, फकीर नू हजूर कर दिंदा है, और वक्त एक अजिहा है जड़ा कोयले नू भी कोहे नूर कर दिंदा है। सो समय समय की गल है, अज मुश्किल है इन्हें कि यह सदा रहन गियां, अज परेशानियां ने इन्हें कि यह सदा रहन गियां। सो बस अपना दिल नहीं छड़ना चाहिए, अंदर कुछ कर गुजरन का जनून होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, थोड़ी उम्मीदा की पींग नू खुलारा जरूर मिलेगा। और असी भी यो अरदास यो फरियाद करते हैं और कि थानू हर कदम ते कामयाबी मिले, थोड़े हर सुपने पूरे होन, थोड़े हर चावां थोड़ियां आसां नू बूर पवे और तुसी कामयाबी दे सिखरां दे उपर हमेशा हमेशा जड़ा है इसी तरह ही चढ़ते जाओ।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज ते प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित दे नाल। ते प्रोग्राम दे विच हुण गल करदे आं स्पोर्ट्स जगत दी दुनिया दे बारे, और स्पोर्ट्स जगत दी गल करिए तां अज क्रिकेट दे विच बहुत वड्डा मुकाबला होण जा रहा है जनाब, क्योंकि 73 मैच ते करीब 2 महीनों के बाद IPL 19 का अज चैंपियन मिलन जा रहा है अहमदाबाद स्टेडियम दे विच। जी हाँ, गुजरात और बेंगलुरु की टीम दे विच मुकाबला होण जा रहा है, IPL का फाइनल मैच होण जा रहा है, और दोनों टीमों की गल करिए हुण तक दोनों टीमों ने एक एक ट्रॉफी जिहड़ी है जित्ती हुई है, और गुजरात ने 2022 दे विच डेब्यू सीजन दे विच ट्रॉफी हासिल की थी, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पिछले सीजन 18 साल दे विच पहली बार चैंपियन बनी सी। सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम दे विच ये मुकाबला होण जा रहा है। और देखना दिलचस्प होएगा कि केड़ी टीम जिहड़ी है ओ मुकाबले दे विच जितदी है, और केड़ी टीम दे हत्थों ट्रॉफी जिहड़ी है ओ फिसलदी है। सो मैदान दे विच जित हार चलदी रहिंदी है, पर थोड़ी मैदान दे विच कीती हुई कोशिश, थोड़ी जिहड़ी मेहनत है ओ रंग जरूर लैके आउंदी है। सो इसी तरह ही एक होर मेहनती खिडारियों की गल कर रही है। जी हाँ, भारतीय स्टार पुरुष शटलर जोड़ी सात्विक साईराज ते चिराग शेट्टी ने कल बहुत वड्डा उलटफेर करते हुए सिंगापुर ओपन के फाइनल दे अपनी जगह बना ली है, और उन्होंने चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने सैमीफाइनल दे विच वर्ल्ड नंबर एक किम वोन ही और सियो सियोंग जई नूं सीधे गेम दे विच हरा के जड़ा है फाइनल दे विच जड़ा है अपनी जगह पक्की कीती है। सो वह कि जो तुसी मेहनत करदे हो तां उस वक्त जड़ा है उस मेहनत दी सारी दुनिया गवाह बनती है। सो उस मेहनत नूं बूर जरूर पैंदा है, उस मेहनत दा मुल जरूर पैंदा है।

102.7 FM रेनबो 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो। गुड मॉर्निंग जलंधर अपने दोस्त ललित दे नाल। दोस्तों कहिंदे ने कि इंसान सब कुछ खरीद सकता है पर चंगी सेहत नहीं खरीद सकता। जे साह सही चल रहे होण, दिल तंदुरुस्त होवे, चेहरे ते मिठी जिही मुस्कान होवे, तां जिंदगी दा हर दिन साडे लई त्यौहार वांग

0: यार राहुल, मैं काफी दिन तो तेनू देख रहा है, तू काफी बुझा बुझा जा, उदास उदास जा लगदा है, की हो गया?
1: की दसा यार, काम दा प्रेशर इन्ना है ना, मैनू लगदा है ना मेरी जिंदगी बोझल हो चुकी है। हुण तू ही दस, मैं इदां दा की करां कि जिंदगी च बुल्ले लुट सकां ते सुकून नाल रवां।
0: लै मित्रा, घबराउण वाली नहीं कोई गल, अपने कोल इहदा वी हल।
1: की?
0: जे तू चाहुंदा है तेरी रूह नूं मिले सुकून, ते कर मित्रा FM रेनबो न्यू ट्यून। जी हाँ, रूह नूं मिले सुकून ते करो मित्रा FM रेनबो न्यू ट्यून। FM रेनबो है खुशियां दा खजाना वंडदा थोड़ा सब तो सच्चा साथी। दिलां दी गल दिलां तक पहुंचाउण वाला प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग जलंधर, दिल अपना पंजाबी अड्डी टप्पा, यानी कि सारे दे सारे प्रोग्राम थोड़ी रूह तक

0: डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: समुद्री फौज के मुखी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दौरान भारतीय समुद्री फौज ने लड़ाई की तैयारी, संचालन समर्थावां अते हमलों नूं नाकाम करन दी काबिलियत दा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि तिना सेनावां विचकार तालमेल बहुत महत्वपूर्ण सी, जो संयुक्त संचालन समर्थावां दी वधदी महत्ता की पुष्टि करता है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीण नाल मरन वाले की गिनती 21 तक पहुँच गई है। इन्हां विचों 7 लोग पुणे के जदों के 14 पिंपरी चिंचवाड़ और उरली कंचन इलाकों के ने। इस केस के संबंध में हुण तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने लापरवाही लई 22 अधिकारियों को मुअत्तल कर दिता, जिन्हां विच 9 पुलिस मुलाजम और राज आबकारी विभाग के 13 मुलाजम शामिल ने। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लई पेट्रोल डीजल ते हवाई ईंधन ते बरामदी महसूल विच सोध कीती है। इस कदम दा उद्देश पछमी एशिया संकट तो पैदा हुई अनिश्चितता दरमियान पेट्रोलियम उत्पादों की लोड़ी घरेलू उपलब्धता यकीनी बनाना है। वित्त मंत्रालय वालों जारी नोटिफिकेशन अनुसार पेट्रोल की बरामद से प्रति लीटर 1.5 रुपए ड्यूटी लगेगी, जदों के डीजल की बरामद से 13.5 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी तय की गई है। हवाई ईंधन से बरामदी महसूल 9.5 रुपए प्रति लीटर होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बरामदी महसूल, जिस विच विशेष वाधू आबकारी ड्यूटी और सड़क के बुनियादी ढांचा सैस शामिल ने, इस साल 27 मार्च को लागू किए गए सन। कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन दी औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हर पंद्रवाड़े इन्हां दी समीक्षा की जाती है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि घरेलू खपत लई पेट्रोल ते डीजल ते मौजूदा आबकारी महसूल दरां विच कोई बदलाव नहीं किया गया। सोधियां दरां कल तो लागू होणगियां ते अगले पंद्रवाड़े लई लागू रहणगियां। सरकार ने भड़के तो 31 अक्टूबर तक कपाह की दरामद ते कस्टम ड्यूटी तो अस्थाई तौर पर छूट दे दित्ती है। कपड़ा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन विच कहा कि फैसला कपाह किसानां दे हितां नूं ध्यान विच रखदिआं लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि कपाह के ऑफ सीजन दौरान लागू किया गया यह उपा कपड़ा सनत लई कपाह की ढुकवीं उपलब्धता नूं यकीनी बनाएगा, छोटे ते दरमियाने उद्यमां दा समर्थन करेगा ते भारतीय कपड़ा सनअत दी मुकाबलेबाजी नूं मजबूत करेगा। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्सहैंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, तो यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। म्यांमार दे राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन कल शाम भारत दे 5 दिना दौरे ते नवीं दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय विदेश राज मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे ते उन्हां दा स्वागत किया। इस तो पहला राष्ट्रपति बिहार गए ते गया दे महाबोधि मंदिर विच पूजा की। उन्हां दे नाल कई मंत्री, सीनियर अधिकारी ते सफारती आगुआं दा एक उच्च पदरी वफद भी आया है। राष्ट्रपति दे अहुदे ते रहिंदिआं इह उन्हां दा पहला भारत दौरा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन नाल मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने लंबे समय तो चल रहे दवल्ले सहयोग नूं होर मजबूत करने लई म्यांमार दे राष्ट्रपति की सकारात्मक पहुंच की शलाघा की। म्यांमार दे राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करके दोहां देशां विचकार इतिहासक अते सभ्याचारक संबंधां नूं मजबूत करन ते चर्चा करनगे। अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हैक्सथ ने भारत नूं खेतरी स्थिरता दा एक मुख थम दस्सिया है। सिंगापुर विच शंगरीला डायलॉग विच उन्होंने भारत नूं हिंद प्रशांत खेत्र विच सुरक्षा ते संतुलन दा एक महत्वपूर्ण आधार करार दिता। श्री हैक्सथ ने भारत दे फौजी आधुनिकीकरण ते रक्षा उद्योगिक समर्थावां दी वी खुल के प्रशंसा की। मंत्री ने भारत दे रक्षा निर्माण खेत्र की शलाघा की ते उन्नत फौजी कार्यां च सहयोग करन दी इस दी वधदी समर्था दा जिक्र किया। श्री हैक्सथ ने कहा कि भारत उच्च पदरी फौजी समर्थावां नूं बनाई रखने लई जरूरी उद्योगिक अते लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। वाइस एडमिरल संजय वासन ने भारतीय समुद्री फौज की पछमी कमान के मुखी वजो अहुदा संभाल लिया है। इस अहुदे नूं समुद्री फौज में सब तो महत्वपूर्ण संचालन अहुदों में एक मनिया जाता। इस तो पहला वह नवी दिल्ली में समुद्री फौज के हैडक्वार्टर विखे समुद्री फौज के उप मुखी वजो सेवा निभा रहे सन। तंबाकू के खतरों विरुद्ध जागरूकता पैदा करने लिए अज विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन विश्व सेहत संगठन वालों तंबाकू की वरतों को खत्म करने लिए एक विश्वव्यापी पहल है। तंबाकू रहित दिवस के हिस्से वजों केंद्रीय सेहत सकत्र पुन्य सलीला श्रीवास्तव ने शुक्रवार नवी दिल्ली में तंबाकू मुक्त सिक्ख्या संस्थावां TOFEI ऐप की अजमायशी शुरुआत की। इस ऐप का उद्देश देश के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त नियमों लागू करन अते निगरानी मजबूत करना है।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: यार राहुल, मैं काफी दिन तो तेनू देख रहा है, तू काफी बुझा बुझा जा, उदास उदास जा लगदा है, की हो गया?
1: की दसा यार, काम दा प्रेशर इन्ना है ना, मैनू लगदा है ना मेरी जिंदगी बोझल हो चुकी है। हुण तू ही दस, मैं इदां दा की करां कि जिंदगी च बुल्ले लुट सकां ते सुकून नाल रवां।
0: लै मित्रा, घबराउण वाली नहीं कोई गल, अपने कोल इहदा वी इह हल।
1: की
0: जे तू चाहुंदा है तेरी रूह नूं मिले।

0: हटकर भीड़ में कलाकारी रख, पल भर ये जोश जवानी का बुढ़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबान प्यारी रख, फिर भी जुबान प्यारी रख। धन्नवाद जी, दिल अपना पंजाबी।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसी प्यारी जी कविता दे जरिए प्यारी प्यारी गल्लां दे जरिए प्रोग्राम च हाजिरी लगाउंदे हो, बहुत वधिया लगदा है। सो जनाब नंबर एक बार फिर तो नोट कर सकते हो, 9855 10 10 27। सो बहुत सारे दोस्त सानू कह रहे सी कि प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे जिहड़ा समा है वह वधाया जाए, तो यह समा असी ता ही जिहड़ा वधा सकते हैं जे असी वध तो वध प्रोग्राम दे विच आप भी शिरकत करिए, तो अपने परिवारक मैंबरां नू और अपने दोस्तों मित्रां तक भी यह मैसेज पहुँचाइए कि प्रोग्राम दे विच तुसी भी अपनी प्यारी जी आवाज़ सुनाओ। सो फिलहाल एक होर साढ़े तक 17 पहुँचियां ने। एक माँ अपनी धी नू हमेशा खुश देखना चाहती है, वो अपनी धी नू हर खुशी देने की कोशिश करती है जो कि कदी उसने भी नहीं मिली जदों धी व्याही जाती है तो वह बस एको गल सोचती है कि रब्बा मैं तो चंगी माड़ी कट ली पर मेरी धी की झोली खुशियां नाल भर दई। सच्ची माँ वर्गा इस दुनिया से कोई नहीं। सो वाकई पाली प्याला होशियारपुर तो सानू कविता भेज रहे सन, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा इस कविता लई। वाकई ताही तो कहा गया कि रब वर्गा कणछावां बूटा मैनू किधरे नज़र ना आवे, लैके जिस तों छां उदारी रब ने स्वर्ग बनाया। प्रोफेसर मोहन सिंह की लिखी हुई ये कविता जिहड़ी आ माँ की महानता नू ही दर्शाउंदी है। सो जनाब एक बार फिर तो थानू मैं डायलॉग सुना जा रहा प्रोग्राम दे विच, तुसी दसना है कि ये डायलॉग केड़ी फिल्म दे विचों लिया गया है और केड़े कलाकारां दी ये आवाज़ है, तुसी ए दसना है 9855 10 10 27 ते। आओ सुनदे आं ये कलाकारां दी आवाज़। जी दोस्तों तुसी इस आवाज़ नू जड़ा जरूर सुनिया होएगा और मैंने उम्मीद है भी तुसी इस वक्त बुझ लिया होएगा कि ये जवाब की है इस डायलॉग था, यानी कि इस डायलॉग दे विच आवाज़ किना दी जड़ी है छुपी हुई है, किहड़े कलाकार ने और किहड़ी फिल्म दे विचों ये डायलॉग ले गए ने। सो एक मैसेज सानू सोनू मरेर कोटला तो भेज रहे ने, कहिंदे कि पहलां लोक जिहड़े सी दिल देख के रिश्ते बनाउंदे सन, पहलां लोक दिल देख के रिश्ते बनाउंदे सन ते हुण लोक स्टेटस देख कर एक दूजे की पहचान बनते जा रहे ने। और सच कहां कि जिदन थोड़ी कहिंदे जेब खाली हो जाएगी उदन थानू कई अपने भी अजनबी लगन लग जाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। सो बाकी फेसबुक इंस्टा जो भी जिहड़े सोशल मीडिया असी ऐप यूज़ करते हैं उन्होंने जिहड़ा आ असी देखते हैं भी बहुत सारे लोगों के बड़ी जल्दी रिश्ते बनते हैं, लखां दे विच उन्हां दे फॉलोअर बन जाते हैं, पर जरूरत पैण ते कोई कोई जिहड़ा आ तुहाडे लई खड़दा है उही जिहड़ा तुहाडा सच तो दिल तो थोड़ा अपना होवे। सो सोशल मीडिया के युग के जिहड़ा आ असी अपने आप दे नालों टुटते जा रहे हैं और बाहरली दुनिया के बाहरले लोगों के जिहड़ा आ प्रसिद्धि हासिल करन दे लई या फिर लोक विखावा दे लई असी जिहड़ा आ ओ चीज़ां कर रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते जा रहे हैं, अपने आप नू चेंज करते जा रहे हैं, पर अंदर तो अपने आप नू मिलना गिलना छड़ दिता है, अंदर तो अपने आप दे नाल असी टुटते जा रहे हैं। सो इहदे बारे जिहड़ा आ सोचना बनता है। सो 9855 10 10 27 नंबर है और प्यार मुहब्बत दियां बातां पाउंदा प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, दिल तो दिल दियां गल्लां थोड़े तक पहुँचा रहे और थोड़े दिल दियां गल्लां असी बाकी स्रोतियां दे नाल सांझियां कर रहे हैं। सो मिलदे हैं एक खूबसूरत गीत तो बाद थोड़ियां और सिर्फ से सिर्फ थोड़ियां गल्लां बातां लैके।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर या 870 किलोहर्ट्स, एफएम 102.7 मेगाहर्ट्स, टीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती, 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर, 100.9 मेगाहर्ट्स अते 100.8 मेगाहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तो थोड़ी देर बाद मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों लई प्रसारण मन की बात साढ़े दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम,
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और यूट्यूब पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल

0: शिकायत करें तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया ना किड बैग।
2: आरबीआई कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
8: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
9: नमस्कार सर। नमस्कार।
10: नमस्कार सर।
8: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
9: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
8: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
11: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था।

0: बताते हैं, जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना

0: गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तुम मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी।
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे

0: हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदरवीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम,

मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के

शासन काल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों,

ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे

0: से बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: हुणे तुसी माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों लई प्रसारण मन की बात सुन रहे सी। साडे अगले ऐलान का इंतजार करो। मीडियम वेव 343.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्स, FM 102.7 मेगाहर्ट्स, TTH दी AIR पंजाब सेवा, DRM 864 किलोहर्ट्स, 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती, 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर, 100.9 मेगाहर्ट्स अते 100.8 मेगाहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तो थोड़ी देर बाद मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियों लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी दे बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना ते पटियाला केंद्र भी ए प्रसारण नालों नाल करनगे।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात विच इक वार फिर तुहाडे नाल जुड़ के ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਕੇ, ਤੇਜਸਵਿਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਦੇਵ ਮੀਣਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ। 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ 3 ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੇ

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायश।

0: दिल को आज भी पुराने रास्तों की खुशबू याद है, वो मिट्टी, वो आंगन, वो बेफिक्री, हंसी और वो लोग जो अब सिर्फ यादों में रहते हैं। शायद इसीलिए इंसान लाख आगे बढ़ जाए, दिल अक्सर पीछे छूटे हुए दिनों में ही सुकून ढूंढता है। हम बेखुदी में भी तुमको पुकारें। रफी साहब की आवाज से विच खूबसूरत जा गीत आ रहा जी तो हड्डी रेडियो सेट ते।
1: एक कंपोजर को दूसरा कंपोजर कॉम्प्लीमेंट करते थे और एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते थे। जैसे हमने सुना है कि सचिन दा ने जब एक गाना बनाया था हम बेखुदी
2: में तुमको पुकारे चले,
1: हाँ, तो रोशन साहब को इतना पसंद आया था कि उन्होंने फोन किया था और बोला था कि बहुत ही प्यारा गाना बनाया है और मैं भी ऐसा एक बनाना चाहूँगा। वो कॉम्पिटिटिव फील थी और मतलब उनको अप्रिशिएट करना कितनी खूबसूरत बात है जो आजकल नहीं है।

वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन किता है तुसी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी मिड डे मेलोडीज जिहदे विच बहुत सारे गीत जिहड़े ने रफ़ी साहब दे होन लता जी दे होन या फिर आशा जी दी आवाज़ दे विच या होर भी बहुत सारे सिंगर्स जिन्हां ने साडे 60 दे 70 दे 80 दे दशक नूं जिहड़ा है यादगार बना दिता ओह यादगार गीत जिहड़े ने इस खास प्रोग्राम दे विच तुहाडे लई प्ले किते जांदे ने सो अगला गीत भी जिहड़ा आ रहा है एक मूवी सी जो कि दिलीप कुमार जी ने कह सकते हैं लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार जी ने आप लिख के फिर उस तो बाद उन्होंने डायरेक्टर राम मुखर्जी नूं दित्ती सी जो कि फादर ने एक्ट्रेस रानी मुखर्जी दे ते उन्होंने फिर इस फिल्म नूं डायरेक्ट किया सी ते उसी फिल्म तो एक गीत तुहाडे लई आ रहा है मूवी का नाम है जी लीडर जो कि 1964 दे विच रिलीज़ हुई सी

जी प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज स्टूडियो की कड़ी दे विच टाइम हो चुका है 1:35 ते 25 सैकेंड। अगला गीत जो आ रहा है तुहाडे रेडियो सेट ते फ्रॉम द मूवी आए मिलन की बेला। टाइमलेस सॉन्ग जो है जिदे विच प्यार भी है ते प्योर

वो कुछ और दे या ना दे, अपनी यादें छोड़ जाते हैं घर में। वो लब से कुछ कहें या ना कहें, पर यादें बहुत कुछ कह जाती हैं। इंसान दूर हो जाए लेकिन उसकी परछाई हमेशा साथ रह जाती है। FM 102.67 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल, और आगाज हो चुका है जी आज दे प्रोग्राम दिल आज शायर है दा। रोज़ दोपहर 2 बजे प्रोग्राम प्रसारित होंदा है जी आकाशवाणी जलंधर दे इस चैनल ते, और तुसी इंजॉय करदे हो इस प्रोग्राम नू, और ये प्रोग्राम जिस विच असी सांझियां करदे हां कुछ शायरियां तुहाडी लिखियां होईयां और कुछ अपने वल्लों साडियां शायरियां। और अज दे इस सफ़र नू शुरुआत करन तो पहलां तुहाडे नाल एक गल जिहड़ी सांझी करन जा रहे हां कि जिहड़ी वी अज असी शायरी शेयर करनी है, चाहे तुसी अपनी लिखी हुई शायरी साडे नाल शेयर कर सकदे हो किसे नू डेडिकेट करदे होए, ते जिहड़ा शब्द है जिहड़ी थीम है अज दी वो है जी याद। जी बिल्कुल जी, अज तरीक जिहड़ी है 31 तरीक इस महीने दी हो चुकी है जी, और महीने दी आखरी तरीक यानी कि पूरे महीने दी याद जिहड़ी है वह किते ना किते रहिंदी है, चाहे हफ्ते दी होवे, चाहे दिन दी होवे, चाहे महीने दी होवे, चाहे साल दी होवे, तां एक याद है, चाहे वह पल दी है या फिर किसे खास शख्स दी है, वह याद जिहड़ी है वह सानू याद आउंदी ही रहिंदी है, और उस याद करके साडे चेहरे ते कई वारी मुस्कान आ जाती है और कई वारी हंजू भी आ जाते हैं। तो उही यादां दे बारे असीं अज थोड़ियां जिहियां गल्लां करांगे, उहनां नूं याद भी करांगे और उस नूं याद करदे होए याद दे उत्ते कुछ तुहाडी कवितावां या शायरियां तुसीं जिहड़ी भी सानूं शेयर करोगे सांझियां करोगे करनी कित्थे है। नंबर है जी 9855101027 9855101027 ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

धुंधली सी यादों का एक कारवां है, इन आँखों में अब भी ठहरा हुआ समा है। भूलना चाह जिसको वो और पास आया, हर पल हमें बस उसी का एहसास दिलाया। कटते नहीं दिन और रातें हैं सुनी, दिल में छिपी है कोई अनकही कहानी। दोस्तों एक शायरी होर भेजी है सानू, आओ देखते हैं किन्होंने भेजी है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। फिल्म दिल आज शायर है विच सर कुलदीप जी, बलविंदर सरा पिंड मोरजन सिक्का हनुमानगढ़ तो ये लिख रहे ने। दिल न जाने तुमको क्यों याद कर रहा है, फिर से चाहत की फरियाद कर रहा है। जख्म अब तक नहीं भरे हैं किसी बहाने से, हालात तो पूछो आकर अपने दीवाने से। संगरूर तो भी एक मैसेज आया साढ़े को, किक्की तिमान जी ने मैसेज किया है, लिख रहे ने। पतझड़ में ही परख होती है रिश्तों की, पतझड़ में ही परख होती है रिश्तों की, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। वाह जी वाह, क्या लिखा है जी इन्होंने, बहुत ही प्यारी शायरी है लिखी है इन्होंने जी, किक्की तिमान जी संगरूर तो जी। और तुसी भी अपनी शायरी है साढ़े को भेज सकते हो, नंबर द्वारा दस दिना जी 9855 10 10 27 9855 10 10 27। अपनी लिखी हुई शायरी या किसी नूं भी कोई भी कविता जिहड़ी डेडिकेट करना चाह रहे हो साढ़े कोल भेजो, और मैं अपने अंदाज दे विच उस नूं पेश करांगा, और तुहाडा जिहड़ा मैसेज है इस प्रोग्राम दे विच शामिल करांगा। प्रोग्राम चल रहा है जी दिल आज शायर है, दोस्त है तुहाडा जी कुलदीप। आओ सुनदे हां अगला ट्रैक तलत अजीज जी दी आवाज़ दे विच, प्यार तुम्हारा।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, न जाने कितने ही फॉर्म्स में आजकल लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि जानते हैं कि तंबाकू खाना सेहत के लिए कितना जानलेवा है। जानबूझकर कुएं में गिरने में कितनी समझदारी

0: है, जानेंगे हम आज के रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज, यानी कि तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली से। और आपके साथ हूं मैं आरजे रश्मि गुप्ता। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद रश्मि जी। और आई थिंक मौखिक स्वास्थ्य और तंबाकू सेवन का बहुत ही अटूट रिश्ता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े, एक छोटी सी बात यही कि तंबाकू सेवन से किस तरह से हमारी ओरल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं।
1: जी रश्मि जी, एक्चुअली ये एक ऐसी चीज है, जैसे मैं आपको डेंटल प्रॉब्लम या जो मौखिक बीमारियां जो तंबाकू सेवन से होती हैं उसके बारे में ज्यादा बोलने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि, और सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि तंबाकू सेवन जो है वो एक एडिक्शन है जिसको, और ये क्लासिफाइड बीमारी है, मतलब एक डिसऑर्डर है, मेडिकल कंडीशन है जो क्लासिफाइड है। और इसके सेवन से भी नुकसान होता है, जब आदमी इसको सेवन करके एडिक्टेड होता है तब छोड़ने पे भी विड्रॉल सिम्टम्स होती हैं। तो जरूरी ये है, पहली बात ये जानना कि तंबाकू सेवन जो लोग सोचते हैं, चाहे वो धूम्रपान के रूप में किसी भी फॉर्म में हो या फिर जो निर्धूम या फिर जो स्मोकलेस टोबैको जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके जैसे मसाला गुटखा खैनी पान और अलग अलग मसाले आते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भी सब तंबाकू के अंडर ही आते हैं। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसी भी तरह का सेवन, एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलेंट है अगर हम लोग मुंह में लेते हैं तो उससे ना शुरुआती लक्षण जो होती है वो, खास करके आपके दांत नॉर्मली सफेद होते हैं, शुरुआत में क्या होता है सफेद दांत जो है वो धीरे धीरे करके उनका रंग जो है बदलना शुरू होता है। उसके बाद धीरे एक बार दांतों का रंग जो है नॉर्मली जैसे क्रीमी व्हाइट होता है या फिर सफेद होता है, तो वो रंग जो है वो धीरे धीरे रंग बदलता है पीले से और फिर आगे जाके काला या फिर भूरे रंग का हो जाता है। उसके बाद अगला जो है फिर वो मसूड़ों की बीमारियां शुरू होती हैं, और मसूड़े जो होते हैं वो हमारे दांतों के चारों तरफ जो बाहर दिखने वाला जो क्राउन पोर्शन जो सतह हमें दिखती है अपने दांतों में, तो उस चीज को पकड़ के रखता है और उसको मसूड़े वहां पर जो है सपोर्ट करते हैं, और वो जो है फिर वो इस जो उसके, जैसे हम लोग सिगरेट लेते हैं, सिगरेट के धुएं से जो गर्मी पैदा होती है या फिर तंबाकू का सेवन जो गुटखा खैनी के रूप में लेते हैं उससे जो जो जो रस निकलता है वो सब इरिटेट करता है या फिर नुकसान पहुंचाता है हमारे मसूड़ों, और उससे होती है मसूड़ों की बीमारियां। तो ये हैं सब शुरुआती जो बीमारियां जो मुख में जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से दिखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप तंबाकू के जकड़ में आ जाते हैं पूरी तरह से और कंटिन्यूसली इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इनिशियल जो शुरू करते हैं वो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं, बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ टाइम बढ़ा देते हैं लोग, उनको याद ही नहीं आता कि कितने पिए उन्होंने, सिगरेट कितने पिए, बीड़ी कितने मारे या फिर खैनी और गुटखा कितनी बार खाया, क्योंकि उनके मुंह में हमेशा चलता ही रहता है और उसका जो रस निकलता है वो अपने आप में हानिकारक होता है। तो तंबाकू में जैसे मैंने आपको बताया, पहले दांतों का रंग बदलना, उसके बाद मसूड़ों की बीमारियां होना, और धीरे धीरे जब मसूड़े फूल के उसमें से खून निकलना आए तरीके, मतलब आप जस्ट ब्रश करिए उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होता है कि उसके बाद मसूड़ों की जकड़ जो है ना वो कम हो जाती है और दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, जैसे आप हम आगे बढ़ेंगे मैं इनके बारे में और भी जानकारी देना चाहूंगा आपको।

आज हम बात कर रहे हैं ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। जी हाँ, आज का रेडियो डॉक्टर का विषय यही है, तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं। यदि आप भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपके जान ले, ये केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। और सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो तंबाकू सेवन से ये शुरुआती लक्षण

0: आज हम बात कर रहे हैं ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। जी हाँ, आज का रेडियो डॉक्टर का विषय यही है, तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं। यदि आप भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपके जान ले, ये केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। और सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो तंबाकू सेवन से ये शुरुआती लक्षण जो होते हैं, शुरुआत में ही जो लोग इसे खाना शुरू करते हैं उनके दांतों का रंग बदलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे मसूड़ों की समस्या शुरू हो जाती है, तो क्या इनके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स या लक्षण होते हैं कि जिनसे पहचाना जा सकता है कि हाँ, ये तंबाकू उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है?
1: जी जी, बहुत बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज क्या है कि ये एक, जैसे मैंने आप शुरुआती लक्षण बताया, इसके आगे कैसे होता है कि तो दांतों के जो हड्डी के अंदर जो होती है, हड्डी का गलना भी शुरू होता है, और उससे पहले जो तंबाकू का सेवन जो करते हैं, जो लोग सेवन ज्यादा करते हैं, उनमें ये दांत के जो हड्डी कमजोर होने से दांत समय से पहले गिर भी सकता है। मतलब उसको वी कैन टूथ लॉस जिसको बोलते हैं, या दांतों का समय से पहले गिर जाना भी संभव है तंबाकू जो सेवन करते हैं।
0: सॉरी सर, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे एक कॉलर लाइन पर आ गए हैं, तो इससे पहले कि हम आगे कुछ बताएं, हम उन्हें लाइन पर ले लेते हैं। जी, कौन बोल रहे हैं? आपका नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए।
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
2: मेरा नाम नीरज चौरसिया है और मैं ब्लाइंड हूँ, संत नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी,
2: मेरे दांतों में नीचे ऊपर दोनों साइड दर्द होता है, अजीब सा दर्द होता है, जैसे लगता है मैजिकली थोड़े दिन सही रहता है, थोड़े दिन बाद फिर चालू हो जाता है।
1: जी नीरज जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपको दांतों में दर्द है और आपको कभी रात को दर्द होता है और कभी कभी दर्द होता है और कुछ दिन तक रहता है, लेकिन देखिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको जो निकटतम आपके जो डेंटल प्रोफेशनल, जो दंत चिकित्सक हैं, आपको उनके पास पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जाँच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसका कारण क्या है। अगर उसमें दांतों में सड़न हो गई है तो जी,
2: थोड़े दिनों बाद मैं दिखा के आया था डॉक्टर को, तो उन्होंने दर्द की दवा लिख दी थी और पेस्ट लिख दिया था, मैंने किया, फिर से मेरे दांतों में दर्द चालू हो गया, रोटियां अपने आप खिंचाव से दांतों के बीच में फंस जाती हैं।
1: ठीक है धीरज जी, देखिए दो तीन तरह का से प्रॉब्लम हो सकता है। एक है जैसे मसूड़ों की बीमारियों, दांतों के बीच में जगह बन जाने की वजह से खाना फंसना, और उस तरह ये एक रूटीन प्रॉब्लम है जो लोगों में दिखता है। तो सफाई, उसको क्लीन, मतलब डेंटिस्ट के द्वारा उसकी सफाई करवाना, और उसके बाद बराबर से आपको ब्रशिंग कैसे करना है वो तरीका आप सीख के जाइए, ताकि आप समय सही तरीके से ब्रश करके उन जगहों को साफ रख सके जहां पर खाने फंसने की संभावना ज्यादा है। और उसके अलावा जो दर्द का है, दोबारा आप जाइए एक बार डेंटिस्ट के पास जाइए, जो भी निकटतम है, या फिर हमारे अस्पताल में आके दिखाइए और वहां पर इसका सही से इलाज करवाइए।
0: जी, तो मुझे लगता है नीरज जी को बिल्कुल अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे कि जो लक्षण आप बता रहे थे कि दांत गिरने भी लगते हैं या जो दांत की हड्डी है वो कमजोर होने लगती है, तो एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, चलिए इसे हम, मतलब अच्छा लगता है जब हमारे जो लिसनर्स हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलता है हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा, तो सच मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे कॉलर लाइन पर हैं। जी हेलो।
3: जी
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप? सर आपका नाम बताइए।
3: मैं जयकिशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए। जी
3: मेरा ये कहना है कि जो नॉर्थ इंडिया वाले सतोरा साथ में रखते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं, सुपारी, सूखी सुपारी, उसमें चूना और तंबाकू डाल के वो लोग खाते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे चूना भी जाता है हमारे को, तंबाकू भी जाता है, और दांत हमेशा मजबूत रहते हैं। तो क्या दांतों को कैल्शियम की एक तो बहुत जरूरत होती है, इससे नुकसान होता है फायदा होता है? दूसरा मेरा ये कहना है कि जो बीड़ी है, बच्चा बच्चा बीड़ी पीता है, बड़े लोग बीड़ी पीते हैं, गरीब आदमी बीड़ी पीता है, बड़ा आदमी कहता है सिगरेट पीता है, वो बहुत महंगे सिगरेट पीता है, सिगार पीता है, कहता है उससे तो कभी नुकसान होता ही नहीं।
0: जी
3: तो
0: आप...
3: क्या ये बस सच है या गलत है?
1: जी,
3: ये दो बातें मेरी हैं।
1: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए, दोनों सवालों का जवाब मैं तो जल्दी दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि देखिए कैल्शियम के सोर्सेज, मतलब और भी तरीके हैं कैल्शियम अपने शरीर में लेने के लिए, दूध और उस तरह से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आप, पनीर है, बाकी सब यू नो बहुत सारे प्रोटीन और फिर नॉन वेजिटेरियन आइटम भी हैं, सब कुछ आप मिला के एक, अगर आदमी वेजिटेरियन है तो अलग तरीके से कैल्शियम का सपोर्ट ले सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन वो अलग तरीके से ले सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो तंबाकू का सेवन चूना और इसके साथ खाते हैं, देखिए वो किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान शायद आज उनको पता नहीं

0: रहा, लेकिन धीरे धीरे करके दांत सख्त नहीं होंगे, मसूड़े बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, अभी उनको वो एहसास हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके उसके जो जो जो उसका जो प्रकोप है वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो नंबर वन ये है। नंबर टू ये है, बीड़ी जो है, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, आप कुछ भी बोल लीजिए, सारे के सारे सेहत के लिए आज नहीं तो कल हानिकारक हैं। वो आपको आज शायद दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ ही सालों में इन सभी व्यक्तियों जो इनका सेवन करते हैं उनमें इसके लक्षण और साथ साथ उसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने लक्षण भी बताए, और लेकिन साथ साथ ओरल प्रॉब्लम्स, मतलब या तंबाकू खाने से और क्या क्या समस्याएं, क्या बीमारियां हो सकती
0: जी
1: है?
0: मैं बहुत जल्द बताता हूँ, जल्दी देखिए, एक जैसे मैंने अभी तक बता चुका हूँ जो लक्षण हो चुके हैं, उसके अलावा जैसे मुंह में छाले पड़ना, तो वन ऑफ द रीजन, एक कारण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ऐसा, छाले जो तंबाकू के सेवन से पड़ते हैं, खास करके उन जगहों पर जहां पर तंबाकू किसी तरह से रखा जाता है, चाहे गुटखा खैनी रखते हैं, उससे भी ये छाले पड़ सकते हैं। और ये छाले ऐसे होते हैं कि वो भरते नहीं है, जल्दी भरते नहीं है, और इनका जो इसकी वजह से जलन होती है, खाने खाने में दिक्कत होती है, और साथ में नॉट ओनली दैट, उसके बाद जो आपके अंदर के जो मांसपेशियां हैं वो सख्त होना शुरू होते हैं। जब वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं तो नॉर्मली हमारी मुंह जो है वो 3 उंगलियों के बराबर खुलता है, धीरे धीरे करके जब वो सख्त, उसके जो मांसपेशियां सख्त होना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से मुंह का खुलना भी कम हो जाता है और दिक्कत होती है बोलने में, यहां तक कि खोल के ठीक पानी मुंह साफ करने में या कुल्ला करने में भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। और इसको हम कहते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो खास करके मसूड़ों के मांसपेशियों के सख्त होने की वजह से होता है। उसके अलावा सफेद धब्बे और लाल धब्बे भी पड़ते हैं, जहां पर हम लोग, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, ये कैंसर से पहले के होने वाले लक्षण हैं। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया गया, ये सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर खुद आईने के शीशे के सामने भी आप जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कोई इस तरह का धब्बा जो हट नहीं रहा हो और काफी 3 हफ्ते से ज्यादा आपके मुंह में हो गया हो, तो आपको तुरंत दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर के शुरुआती लक्षण है। और अगर इसको छोड़ दिया और ऐसे ही तंबाकू का सेवन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मौखिक कैंसर या मुख कैंसर, जिसको हम लोग ओरल कैंसर बोलते हैं, वो होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तंबाकू सेवन करने वालों में।
1: सर, मुंह का कैंसर में मतलब केवल एक कहाँ का एग्जैक्टली हम बोलें कि गले में हो जाता है, गाल में हो जाता है, या इसको मतलब कंप्लीट ये सारे ये जो अंग हैं हमारे शरीर के वो सब इससे प्रभावित होते हैं?
0: ज्यादातर तो सभी प्रभावित होते हैं एक तरीके से, लेकिन खास करके उन जगहों पे जहां पर हम गुटखा खैनी बीड़ी की वजह से तो अलग अलग जगहों पे हो सकता है, जैसे गले में भी हो सकता है, लेकिन गुटखा खैनी की वजह से खास करके इस तरह के जो मसाले वाले जो तंबाकू पदार्थ हैं वो उन्हीं जगहों पे होता है जहां पर इसको रखा जाता है खास करके।
1: जी, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
2: हाँ जी, हेलो।
1: हेलो जी, आपका नाम बताइए और कहाँ से आप बोल रहे हैं बताइए।
2: जी, मेरा नाम दिवाकर है, और डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी सर, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपने बताया कि दांतों में कई प्रकार की तकलीफें हो जाती हैं, हर उम्र में हो रही हैं
0: जी।
2: तो बेसिकली सवाल मेरा ये था सर कि जैसे हम लोग केयर करना चाहते हैं दांतों की, मतलब ऐसे कोई बीमारी जैसी चीजें ना आ सके
0: जी,
2: तो अब मतलब एक डॉक्टर, एक मेडिकल साइंस क्या कहता है कि हम किस तरह से रोज ब्रश तो कर ही रहे हैं सर, लेकिन कुछ आप थोड़ा हमें वो बताएं, जैसे केयर कैसे करें, क्या ध्यान रखना चाहिए जरूरी।
0: जी दिवाकर जी,
2: सर थोड़ा सा।
0: जी जरूर बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने अभी बताया, तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन नहीं करना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, जो ब्रशिंग जो करते हैं सही, मतलब आपको ये याद रखना है कि ब्रश दिन में 2 बार करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और उतना ही नहीं, हर बार जब आप ब्रश करें 2 से 3 मिनट सही तरीके से, कई बार ब्रशिंग तो सब लोग करते हैं लेकिन तरीका गलत होता है, कई बार जोर ज्यादा लगाते हैं, कई बार मंजन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी यह है ध्यान रखें कि रेशे जो है ब्रश के मुलायम हो और आप नरम हाथों से, अपने हाथों से बहुत ज्यादा दबाव न डालते हुए सही तरीके से ब्रश करें। इसकी सही विधि और प्रणाली होती है जिसको आप अपने दंत चिकित्सक से आप सही तरीके से सीख सकते हैं। तो दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह और रात को सोने से पहले, और ब्रश जो है, टूथब्रश जो है, हर 3 महीने में एक बार उसको चेंज करना जरूरी है। और अगर आप समय से पहले आपका टूथब्रश खराब हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। उसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि आप जब भी खाना खाएं तो कुल्ला जरूर करें, और अपने उंगली से, साफ उंगली से आप अपने मसूड़ों को भी थोड़ा मालिश करें। तो और उसके लास्ट एक और सजेशन ये है, आपका उपाय ये है कि हर 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको डेंटल जो दंत चिकित्सक है उनसे जांच, आपके जस्ट एक चेकअप कराना, रूटीन चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ तरीके, नुस्खे हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने मौखिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, कुछ एक व्हाट्सएप मैसेजेस भी हम तक पहुंचे हैं।

0: एक लिख रहे हैं, जिला लातेहार झारखंड से कॉलेश्वर ठाकुर, कहते हैं तंबाकू पान मसाला जो लोग सेवन करते हैं उन लोगों को खाना खाते समय सब्जी ज्यादा तीखा लगना या भूख कम लगना या हाथ से चार उंगली मुंह में नहीं जाना है, तो ऐसा मानते हैं कि ये पान तंबाकू खाने से ही हो रहा है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सही तरीके के सारे लक्षण जो हैं, मेरा काम जो है आसान कर दिया है, सारे सही लक्षण बताए हैं। जो भी तंबाकू का सेवन करता है उनको करारा या फिर तीखा खाना बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज उनकी जो अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो पतली हो जाती हैं, इसीलिए मुंह में छाले बार बार पड़ते हैं। इन लोगों को ज्यादातर पड़ते हैं, उसकी वजह से मुंह में जलन, खाना ना खा पाना, तीखा ना खा पाना और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं।
0: एक और मैसेज आया है, सुशील ठाकुर लिख रहे हैं, मेरे टूथ में मेरे दांत में सेंसिटिव है।
1: देखिए सुशील जी, ऐसा है कि कई बार ठंडा गर्म लगने के कई कारण हो सकते हैं।
0: पान खाते हैं
1: तो फिर आपको जानना जरूरी ये है कि पान में खुरदरे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से समय से पहले दांत जो है ना घिसना शुरू हो जाते हैं और उसी की वजह से ठंडा गर्म लगता है। सिंपल सी चीज है, जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम हटा दें तो ये तकलीफों से हम निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हटाएंगे तो इसी तरह से दवाइयों का लेते रहेंगे साथ और फिर बाद में करना उसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। तो इसीलिए
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 102.6 पर और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री से मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस न्यू दिल्ली से। सवाल और भी लेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

0: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ और एक और लिसनर हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपका नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए।
1: नाम मेरा अरुणेश कुमार मिश्रा है मैम।
0: जी,
1: ये बीच में ना मेरे छाले पड़ जाते हैं मसूड़ों में और वो अपने आप फूट जाते हैं, तो डॉक्टर साहब से मतलब क्या कोई टूथपेस्ट वगैरह चेंज करें या फिर कैसे करें?
2: हाँ अरुणेश जी, देखिए अब जो आप कह रहे हैं वो एक बार सही से एक बार जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंह में ऐसे छाले आना या फिर सूजन हो जाना, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कारण जानना ज़रूरी है, बिकॉज इलाज जो है उसी कारण के हिसाब से ही उसका इलाज होता है। अगर दांत से जुड़ा हुआ तकलीफ है तो फिर हम दांतों का इलाज करेंगे, अगर मसूड़ों में तकलीफ है तो फिर मसूड़ों का अलग से इलाज होगा। अगर ये सूजन और जो ये बन रहा है ये बार बार तंबाकू के खाने के सेवन की वजह से हो रहा है तो फिर उसका इलाज अलग होगा। तो पहले तो कारण जानना जरूरी है, क्योंकि इलाज जो है कारण के हिसाब से ही हम इलाज करते हैं। तो अगर एक ट्रेंड सर्टिफाइड दंत चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो वो जरूर पहले जांच करेंगे और जांच के साथ साथ सही कारण क्या है उसका कारण के हिसाब से फिर आगे का इलाज करेंगे।
0: जी बिल्कुल सर। उमेश कुमार जी पूछ रहे हैं ख्याला से, कहते हैं टीथ में मेरे पेन हो यदि तो उसे निकलवाना चाहिए या फिर नहीं, या दवा से भी वो ठीक हो सकता है?
2: उमेश जी देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकता था। अगेन वापस मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज मैं रेडियो टॉक शो पे नहीं कहूंगा जो कि मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो निकटतम आपके दंत चिकित्सक हैं उनके पास दिखाएं पहले, बिकॉज मैं यहां से ये नहीं कह दूं कि दांत निकालना है तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दांत निकालना अगर जरूरी है तो निकालना पड़ सकता है, वरना नेचुरल टीथ जो है आपके जो शरीर का जो अंग है वो उसको जितने दिन तक आप बचा के रखेंगे वो आपके काम ही आएगा, चाहे उसका इलाज करवा के, नसों का इलाज करवा के हो ताकि दर्द दूर हो जाए, और उसके बाद वो दांत वैसे ही रहेगा, लेकिन वो सारे आपके जो काम जो है जैसे चबाने का हो, मुस्कुराने का हो और ये सब चीजों के लिए वो आपको मदद करेगा।
0: जी, तो जितना ज्यादा आप अपने दांतों को या अपने शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहें वो आपके ऊपर है। यदि आप दांतों की या मुंह की सफाई सही तरीके से करते हैं तो आप अपने दांतों को भी बचा सकते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से होने से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं ओरल समस्याओं पर और वो भी तंबाकू खाने की वजह से। तो जैसे कि आपने हमें बताया, लक्षण बहुत सारे बताए आपने, लेकिन इसके अलावा क्या क्या बीमारियां इससे होती है वो भी हम जानना चाहेंगे।
2: जी, ये बहुत जरूरी जानना, बिकॉज तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से आप मान लीजिए कि आपके सर के बाल से लेके आपके पैर के नाखून तक ऐसा कोई अंग नहीं होगा
0: जो प्रभावित
2: नहीं होगा। जब अगर हम कैंसर की बात करें, शरीर में 10 से ज्यादा किस्मों की कैंसर जो है शरीर में होती है, चाहे वो मुंह का कैंसर तो हमने बात कर ही लिया, चाहे गले का कैंसर आप कहिए, फेफड़ों का कैंसर कहिए, स्टमक कहिए, पैनक्रियास कहिए, आप बस गिनते जाइए, कैंसर की गिनती जो है तंबाकू के सेवन से मतलब ऐसा कोई अंग नहीं जो बच जाएगा, नंबर वन। तो कैंसर तो एक बहुत मतलब इमीडिएट मैनिफेस्टेशन जो होता है, उसके अलावा फेफड़ों की बीमारी होना, मस्तिष्क में स्ट्रोक होना, दिल की बीमारियां, बिकॉज सिगरेट पीने से दिल की बीमारियों की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो होना, फिर किडनी में भी प्रॉब्लम्स होना, तो इस तरह से मतलब शरीर के हर अंग में कहीं ना कहीं तंबाकू का असर पड़ता है, यहां तक कि इम्पोटेंसी भी हो सकती है तंबाकू के सेवन से।
0: जी, तो देखिए, आपने तंबाकू, कहते हैं कि तंबाकू बड़ा अच्छा होता है मतलब खाने के लिए, शुरुआत जब करते हैं तो आपको पता नहीं होता, लेकिन पहले ये शुरुआत होती है, एक आदत बनती है, फिर जरूरत बन जाती है और उसके बाद आपको लत लग जाती है और आप इसे छोड़ नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर साहब, एक डेंटिस्ट किस तरह से इस आदत से निजात दिला सकता है किसी भी पेशेंट को?
2: जी देखिए, सबसे पहले
0: मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोगों को पता होना चाहिए कि एक डेंटिस्ट भी किस तरह से इसमें मदद कर सकते
2: जी,
0: हैं।
2: जी जी, बहुत जरूरी है कि ये जानना कि देखिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन जनरल आपकी मदद कर सकते हैं और खास करके एक दंत चिकित्सक जो है वो जो है सबसे पहली बात ये है, दंत चिकित्सक जो है छोटे बच्चों से लेके वृद्ध अवस्था तक सभी को, चाहे वो मेल हो या फीमेल्स हो, वो सभी को वो केटर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दंत चिकित्सक को बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप मिलते रहते हैं, तो सबसे पहली बात दंत चिकित्सक अपने आप ट्रेंड होते हैं, उनको इन चीजों के बारे में जानकारी होती है, और खास करके जब वो चेकअप करते हैं, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं उनको जरूर बताएं कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं और उसी की वजह से आप उनके पास आए, नंबर वन। नंबर टू, एक दंत चिकित्सक आपकी पूरी सब कुछ समझने के बाद वो आपको एक हेल्प कर सकता है, काउंसलिंग और एक डॉक्टर दोनों का मिश्रण है दंत चिकित्सक, वो काउंसिल भी कर सकते हैं, आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं और साथ में डेंटल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं।

0: जी।
1: तो उससे डेंटिस्ट जो है ना, दंत चिकित्सक जो है, बहुत कुछ आपको मदद कर सकते हैं जब तंबाकू छुड़ाने की बात आई तो।
0: जी डॉक्टर साहब, इसी बात पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें लेते हैं हम लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं सर आप?
2: नमस्कार मैडम, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
1: नमस्कार,
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली से।
1: जी जी बताइए।
2: डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेडिकल साइंस को बहुत एडवांस हो गई है, तो ऐसे में अगर कोई होम रेमेडीज है जिससे हमारी ओरल केयर होती रहे और हमारे जो दांत और दाढ़ है वो भी सेफ रहे, कृपया बताने का कष्ट करें।
1: जी जी जी चड्ढा जी, देखिए एडवांसमेंट तो बहुत हुई है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आज तक हम वही हैं, और उसी के हेल्प लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये है कि ब्रशिंग करने, जब आप टूथब्रश सेलेक्ट करते हैं, हर उम्र के लिए अलग अलग, मतलब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग टूथब्रशेज आती हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अलग किस्म के टूथब्रश खरीदें, और टूथब्रश से ही आप उतना जितना मिनिमम चाहिए आप उतना करिए, क्योंकि इतने से ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नंबर वन, दो टाइप के टूथब्रश हैं, और पेस्ट भी बच्चों के लिए अलग किस्म के आते हैं और बड़ों के लिए अलग किस्म के आते हैं, ये भी ध्यान रखिए। पेस्ट बहुत जरूरी है, किसी भी व्हाइट कलर का पेस्ट जो भी होता है, प्रेफरेबली जेल ना हो, लेकिन आप जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पेस्ट का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। और तीसरा ये है, जो आप जीभ साफ करते हैं, टंग क्लीनर जिसको हम बोलते हैं, इन तीन चीजों से ही आप एक मिनिमम, मतलब एक बहुत स्वस्थ मौखिक स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं। साथ में अगर आप इसमें जोड़ दें रेगुलर डेंटल चेकअप, तो इन चार चीजों से, और आप जो हेल्दी खाना खाते हैं, जो बैलेंस डाइट होता है, या फिर आप कहिए जो पौष्टिक आहार होता है, इन चार पांच चीजों को लेके आप अपने मौखिक स्वास्थ्य और पूरे शारीरिक स्वास्थ्य को भी आप बरकरार रख सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज हम तक और पहुंचा है, ये लिख रहे हैं केडी त्रिपाठी रांची से, इन्होंने अपनी उम्र बताई है 74 वर्ष। कहते हैं दो दांतों के बीच में जगह हो गई है और वहां पर खाना फंसता है, रबर जैसा मटेरियल से इसको भरा गया था लेकिन ये निकल जाता है, क्या करना चाहिए?
1: जी त्रिपाठी जी, ऐसा है, सबसे पहले एक बार फिर देखना पड़ेगा कि कितना जगह बना हुआ है। उम्र के साथ साथ जैसे हमारे पूरे शरीर में चेंजेस आती हैं, तो हमारे दांतों के भी चेंजेस होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं, और कई बार कोशिश ये होती है एज ए डेंटल प्रोफेशनल हमारी होती है कि उसको जितना ज़्यादा फंक्शनल, या फिर जितना जितना दिन तक हम उसको रख सके, ताकि वो अपना सारा काम, दांत जो है अपना सारा काम निभा सके। लेकिन अगर आप ऐसा लगता है कि जगह बहुत ज़्यादा है और बार बार भरने के बाद भी अगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर हमें और कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे, तो वो प्रेफरेबली यही होगा कि आप लोकल अपने डेंटिस्ट के पास जाएं जो ट्रेन्ड और स्पेशलिस्ट हों, और उनसे खास करके ये ये जांच करवाना बहुत जरूरी है कि इसके अलावा और क्या इलाज हो सकता है।
0: सर डॉक्टर साहब, ऐसा ही एक सवाल सोनू ने भी पूछा है उत्तर प्रदेश से, इनकी उम्र है 35 साल, इन्होंने भी यही कहा कि खाना फंस जाता है लेकिन ब्रश करने के बाद भी नहीं निकलता, तो क्या ये जो गैप है ये अपने आप फिल हो जाते हैं, या इसके लिए मतलब कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं?
1: देखिए सोनू जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारे एज पर जो डेटा जो कहता है, जो आंकड़े जो कहते हैं, वो कहते हैं ऑलमोस्ट 70-80% लोगों में मसूड़ों की बीमारियां होती हैं। ये जो दांतों में जो गैप आना शुरू होता है ना, ये खास करके मसूड़ों की बीमारियां जो है ना, शुरुआती लक्षण वही होते हैं कि मसूड़ों की बीमारियों से फिर उसकी हड्डी गलना और फिर दो दांतों के बीच में जगह बन जाना, तो उसकी वजह से वहां पर खाना फंसना शुरू हो जाता है। जब एक बार फंसना शुरू होता है, उसके बाद अगर नहीं निकलता, तरीका यह है कि डेंटल दंत चिकित्सक के पास जाएं, उसकी सफाई करवाएं। बट उसके अलावा जैसे आप वापस आते हो और रूटीन में आप रहते हो, तो कई बार फंसता है, तो आप लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते हो, तो जरूरी यह है कि इस तरह के जो उपकरण हैं, जैसे टूथपिक रेगुलर, बहुत ज्यादा
0: पिन की भी
1: इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल पेन कुछ भी डालते हैं, तो ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को यूज ना करें, इस्तेमाल ना करें, और अपना डेंटल चेकअप कराते रहें। उसके अलावा जरूरी यह है कि रेगुलर ब्रशिंग और मेंटेनेंस की बहुत जरूरी है, ओरल हाइजीन की।
0: जी एक कॉलर लाइन पर है। हेलो,
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, आपका नाम बताइए।
3: सर को भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार नमस्कार
3: जी, मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी जिला गाजियाबाद।
0: जी पूछिए आपका सवाल।
3: सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि जैसे कि हम पानी नहीं खाते, तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते, गुटखा इस्तेमाल नहीं करते, तब भी हमारे दांत पीछे से लाल क्यों रहते हैं?
1: जी लाल रहते हैं। कुछ और आप कुछ खाने पीने में कुछ और ऐसा कुछ करते हैं?
3: नहीं नहीं कुछ नहीं लेते जी।
1: अच्छा ठीक है, फिर वही मेरा सुझाव यही रहेगा आपको कि आसिन जी आप ना एक आसपास के जो निकटतम डेंटल चिकित्सक हैं उनसे जरूर जांच कराएं। खाने के पदार्थ में भी, हम जो खाना खाते हैं ना उसमें भी रंग होता है, और उसकी वजह से भी हमारे दांतों पे रंग चढ़ सकता है, तो जरूरी यह है कि जानना कि अगर कोई कारणवश अगर है और सालों के बाद

0: आप अपना उम्र कह रहे हैं, सालों पे हम जितना साल हम खाना खाते हैं उसके ऊपर इस तरह के भी चेंजेस आते हैं। जैसे मैं कह रहा था, समय उम्र के साथ जो चेंजेस पूरे शरीर में आते हैं, दांतों में भी आते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये एज रिलेटेड या फिर उम्र के साथ चेंजेस हैं, या फिर इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकता है, तो चेकअप के बाद ही पता लगेगा।
1: जी, एक मैसेज आया है आलोका का, 52 ईयर्स की हैं और कह रहे हैं कि ठंडा गर्म दांतों में लगता है, दांतों के ऊपर कुछ कैविटी सी भी लगती है, इसके लिए प्लीज सजेस्ट करें कि क्या है।
0: आलोका जी, कई बार ऐसा होता है कि ठंडा गर्म लगने के, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ शो पे, कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण जो है दांतों में सड़न होना। तो दांतों में सड़न होने की वजह से, जैसे आप कह रहे हैं कैविटी हो गया, कैविटी होने की वजह से वहां खाना फंसना शुरू होता है और उसकी वजह से भी ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। सबसे पहली बात यह, अगर आपको लगने लग गया कि खाना फंस रहा है, कैविटी हो गया है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो आप जल्द से जल्द जाके उसका इलाज कराइए। क्यों, अगर लेट करेंगे तो ये जो कैविटी है या जो सड़न की वजह से जो गड्ढा बन गया दांत में, वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसकी वजह से दांत शायद पूरा टूट भी सकता है। तो इसलिए जरूरी है समय रहते हुए इसका इलाज कराना जरूरी है।
1: जी सर, एक मैसेज और आया है हम तक, लिखने वाले हैं चैंप सिंह बरमार से। वो पूछ रहे हैं कि मेरे दांतों में मैंने मसाला भरा हुआ है लेकिन कैप नहीं लगाई है, इससे कुछ परेशानी तो नहीं होगी? लेकिन साथ ही ये भी कहना चाह रहे हैं कि दांत का मतलब दाढ़ है और वो एक दांत दाढ़ सही हो गई है लेकिन दूसरे पास के दांत में दिक्कत हो गई है।
0: ओके, देखिए ऐसा हो सकता है कि जो आप वो कह रहे हैं मसाला भरवाया, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि उनमें नसों का इलाज हुआ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें दांतों के नसों का इलाज होता है और सफाई होकर सड़न जब फैल जाती है तो उसकी पूरी सफाई होती है और पूरा मसाला भरा जाता है। और जब ऐसे दांतों में, जब हम लोग पूरे दांत को बचाते हैं, ये खास करके दांतों को बचाने के लिए किया जाता है कि दांत अपनी जगह पर रहें लेकिन उसमें कोई जान ना रहे, लेकिन वो सारे फंक्शंस वो कर सकें जो एक नॉर्मल दांतों करना है। लेकिन इस दांत में क्योंकि कोई न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं है, तो ये दांत जो है इसमें पानी का प्रभाव भी कम, पानी मतलब यू नो वाटर कंटेंट भी कम हो जाता है ओवर द इयर्स, और ये थोड़ा ब्रिटल हो जाता है, मतलब टूटने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए मसाला भरने के बाद विद इन 1 month to 2 months के अंदर, मैक्सिमम विद इन 2 to 3 years के अंदर आप वो कैप चढ़ाना जरूरी है। अगर क्योंकि कैप नहीं चढ़ाएंगे तो दांत का फ्रैक्चर होना या दांत का क्रैक होना बहुत संभव है। ये यू नो इवन 3 महीने 4 महीने के बाद भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सही समय पे कैप नहीं लगाएंगे तो कैप क्या करता है, कैप जो है जितने होने वाले फोर्सेस जो है, तो दांत दो दांत ऊपर और नीचे के दांत जब मिलते हैं उसका जो फोर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन से वो उस दांत पे उतना असर नहीं पड़ता जितना पड़ सकता है।
1: जी, तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स लगातार अपने क्वेश्चंस का आंसर सुन रहे हैं, अपनी समस्याओं का निदान पा रहे हैं, और ऐसे ही एक लिसनर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम बताइए और आपकी समस्या बताइए।
2: मेरी जगजीत सिंह नाम है, मेरे दांत नकली लगे हुए हैं।
1: ओके।
2: हाँ जी, इनसे पूछना है कि रात को लगा के सोएं या कुछ, अब दिक्कत करने लगे, 8 साल हो गए इनको लगे हुए, दांत बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, साफ सुथरे हैं, मगर खाने में अब दिक्कत होने लगी है, कभी दर्द होने लग जाती है।
0: ओके, तो जगजीत जी आपके क्या पूरे दांत लगे हैं या फिर कुछ ही दांत?
2: दोनों, बिल्कुल दोनों दांत लगे हैं, 8 साल हो गए, बिल्कुल साफ है दांत, बिल्कुल चमकदार, फर्स्ट क्लास, कोई नुकसान नहीं दांतों में।
0: अच्छा।
2: मगर लगाने में ना डॉक्टर साहब, कभी महीने महीने के बाद साइड के जो अकेली दांत होते हैं ना, इनमें दबाने में बड़ा दर्द होने लग जाता है, कोई हड्डी सी आ जाती है, पता नहीं क्या होता है उसके नीचे,
0: ठीक है। जगजीत जी, इसके इलाज हैं, इसका आप एक बार ना सबसे पहले जिनसे आपने बनवाया है उनके पास आप दोबारा जाएं और उनको दिखाएं, डेंचर के नीचे भी कई बार कुछ चेंजेस, आप मसूड़ों के ऊपर भी जिसके ऊपर आपका डेंचर रहता है, जो नकली दांत रहता है ना, वो वहां पर भी छाला भी पड़ सकता है। तो एक बार उनको चेकअप करने दीजिए, एक बार देखने दीजिए वहां पर कोई हड्डी का टुकड़ा तो नहीं है। अगर वो पूरी तरह से जांच कर लेंगे और अगर उनको लगता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो फिर वो जो नकली दांत है उसमें भी अंदर से रीलाइनिंग जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज जो मैं कह रहा हूँ ये जांच के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या तकलीफ, कारण क्या है, उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा।
1: जी, तो हमारे सभी लिसनर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए भी और फोन कॉल्स के जरिए भी। आज की हमारा जो विषय है वो है ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। यदि आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। तो अब वक्त हो गया है एक डॉक्टर साहब की पसंद के गीत को सुनने का।

0: रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। डॉक्टर साहब, 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं सबसे पहले ना वर्ल्ड हेल्थ जो विश्व स्वास्थ्य परिषद है, WHO जो है, वो पिछले 1987 से एक मुहिम के उद्देश्य से एक थीम निकालते हैं और इस थीम पे पूरे साल भर काम किया जाता है। जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जितने भी संस्थाएं तंबाकू नियंत्रण के लिए काम करती हैं, उनके लिए एक उनको एक विषय मिलता है जिसपे वो लोग मिलके एकजुट होके इस तरह से काम करते हैं। खास करके देखिए, आज हमारे देश में करीब 3,500 से 4,000 लोग हर दिन तंबाकू के सेवन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकोप से उनका निधन हो रहा है, डेथ हो रहा है। और जब इतने लोग मर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये टोबैको के यूजर्स हैं जो ये मर रहे हैं, और इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि उनको नए उनको कस्टमर्स मिलने चाहिए, उनको और सेवन करने वाले लोगों को मिलने चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि कैच देम यंग, तो प्रिंसिपल है कैच देम, जो बच्चे उनको एक्सपोज करते हैं, आए दिन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, फ्री सैंपल्स बांटते हैं, स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, स्टेशनरी बिकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को रुझाने के लिए किया जाता है। और बच्चे जो हैं पीयर प्रेशर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और खास करके पीयर प्रेशर एक और चीज है, और साथ में रोल मॉडल्स हैं जिनको वो लोग काफी स्क्रीन्स पे देखते हैं, जिनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो सारे तरीके से एक एनवायरनमेंट है। और खास अपने ही आसपास लोगों को देखते हैं कि वो लोग सिगरेट बीड़ी खैनी खा रहे हैं, उससे उनको इन्फ्लुएंस होता है। तो ये इंडस्ट्री जो है खास करके किसी एक रूप में नहीं है, कई रूपों में बच्चों के इर्द गिर्द है जो हमें पता भी नहीं लगता कब इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसलिए जरूरी ये है कि हम बच्चों को बचाए रखें और उनको समझाएं कि इस तरह की आदतों से आज नहीं पूरे जिंदगी भर दूर रहना है।
0: बिल्कुल रहना है, और लेकिन इस वक्त हम एक कॉल से दूर नहीं रह पा रहे। कॉल बहुत देर से हमारे लिसनर वेट कर रहे हैं। तो हेलो
2: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार जी।

0: मैं जितेंद्र दोसार से ग्राम तहसील खैर जिला हरिगढ़ यूपी वेस्ट से।
1: आपका सवाल
0: मेरे तीन
1: पूछिए।
0: सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है, जैसे तमाकू का सेवन करते हैं
2: जी,
0: आपने देखे होंगे कैंसर का रिजल्ट आते हैं
2: जी,
0: चांस अधिकतर बढ़ जाते हैं
2: जी,
0: इस पे क्या कहना चाहेंगे
2: जी?
0: अब यूं तो बोलते हैं कि तम्बाकू एल्कोहल यूज नहीं करें, इन पे पाबंदी लगा दी जाए तो फिर यूज कहाँ से करेंगे
2: जी? बहुत बहुत नेक सोच है आपका और बहुत जरूरी सवाल भी है कि देखिए कैंसर तो होना जो है ना संभव तो जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, इन सब में ऑटोमेटिकली कैंसर होने की संभावना या बाकी शारीरिक बीमारियों को होने की संभावना हम कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि अगर हम कैंसर होने वाला है तो इसको पाबंदी क्यों नहीं करते, क्योंकि ये क्योंकि ऐसा सवाल है जिसका शायद हम एक डायरेक्ट एक सोल्यूशन नहीं है, क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसको जितना ज़्यादा हम रोकेंगे उतना बेहतर होगा सभी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी।
1: जी बिल्कुल, और ऐसा ही डॉक्टर साहब एक और सवाल हम तक पहुंचा है, कहते हैं खाना खाते समय गाल का अंदरूनी भाग कभी कभी कट जाता है, क्या ये दांत या दाढ़ की वजह से होता है, और साथ साथ रात को गर्म या ठंडा पानी कौन सा पीना चाहिए कि दांत हमारे स्वस्थ रहें। लिख रहे हैं मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से।
2: जी मनोहर जी थैंक यू, ये धन्यवाद आपके सवाल का। सबसे पहली बात, गाल के अंदर अगर बार बार दांतों के बीच में अगर गाल आ रहा है तो कई बार ऐसे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं और उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो बहुत नुकीले भी होते हैं, तो इन नुकीले दांतों की वजह से गाल पे इस तरह से कट या फिर छाला पड़ होने की संभावना या चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले इसकी जांच कराएं। कई बार दंत चिकित्सक क्या करते हैं कि उन जो दांत बहुत नुकीले हो गए हैं उनको थोड़ा सा उसकी इलाज करके उसको कम नुकीले बना देते हैं, उससे जो है असर पड़ना इस तरह का होने की संभावना कम हो जाती है। और दूसरा सवाल क्या था आपने पूछा था उनका?
1: उन्होंने यही पूछा था कि
2: मतलब पानी किस तरह का पानी रात को किस तरह से पीना चाहिए। जी जी जी, ऐसा देखिए कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में ना करें तो बेहतर होगा। गुनगुना पानी लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सट्रीम ठंडा पानी या एक्सट्रीम गर्म पानी ना लें, और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है जो आम तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी है उसका सेवन जरूर करें।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल हुक्का पीना या ई सिगरेट या खासतौर पर यूथ में ये वेपिंग बहुत ही आम हो गया है, या अभी आम भी नहीं हुआ है, लोग समझ भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बच्चों में बहुत पॉपुलर है
2: जी।
1: तो क्या आपको लगता है कि लोगों के बारे में मन में ये मिथ है या ये एक्चुअल में है कि इसमें तंबाकू नहीं होता?
2: जी देखिए, ये सब इंडस्ट्री के टैक्टिक्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा इस पे कि जो वेपिंग जो आपने कहा, ये बेसिकली ई सिगरेट, इसको हम एंड्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स। तो ये जो निकोटीन डिलीवरी, निकोटीन क्यों? क्योंकि निकोटीन जो है ना, जो तंबाकू आज हम लोग जो खाते हैं, जो लोग खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या फिर गुटखा खैनी खाते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पदार्थ होता है, वैसे तो उसमें से 400 से अधिक ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं, बट सबसे ज्यादा एडिक्टिव जो सब्सटेंस इन सब में है टोबैको में है वो है निकोटीन। वो इतना एडिक्टिव है कि वो आपका शरीर जो है, जो ब्रेन जो है वो उस पे डिपेंडेंट हो जाता है, और पूरा जब तक वो नहीं होता तब तक उसकी सर्किट कंप्लीट नहीं होती। तो सबसे पहली बात इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री ने निकोटीन के नए नए तरीके डिलीवर करने के तरीके बनाए, जिसमें से वेपिंग एक चीज है।
1: तो आज की डेट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है कि जो यूथ है हमारा वो इस बात को समझे कि चाहे वो हुक्का पीना हो या फिर ई सिगरेट हो और या फिर वेप हो, ये कहीं से भी अच्छी चीज नहीं है और आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए।
2: जी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई सिगरेट्स, वेपिंग, हुक्का, इन सब जो ई हुक्का है, इन सब को बैन कर रखा है 2019 से, और अगर हम ये मिल रहे हैं तो ये इलीगल तरीके से मिल रहे हैं, अदरवाइज दीज हैव बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द होल कंट्री।
1: और मुझे लगता है समय जो यूथ हमें सुन रहा है ना वो बहुत ही इंस्पायर होगा हमारे डॉक्टर साहब की इस बात से, और साथ में उस गाने से जो अगला हम आपको सुनाने वाले हैं हमारे डॉक्टर साहब की पसंद का।

0: से ही एक लिसनर हमें याद कर रहे हैं, उनकी कॉल लग गई है, तो जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
1: हाँ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: सर मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा। उम्र मेरी 48 वर्ष है
2: जी।
1: और सवाल मेरा ये है सर कि मैंने अपनी लाइफ में गुटखे का सेवन किया हुआ है।
2: अब
1: जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने एडवाइस मुझे यो किया कि अगर आप गुटखा खाते हो तो एक तो ये माउथ फ्रेश औषधि होती है मेडिसिन, जिससे मुंह से बदबू कभी नहीं आएगी, दांतों में कीड़े कभी नहीं लगे, इससे तेजाब होता है, तो कभी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और साथ में माइंड फ्रेश औषधि भी होती है, अगर मैं इसको खाता था तो दिमाग से मेरे सिर दर्द जो होता है वो भी मतलब कुछ गायब हो जाया करता था, और अगर मैं कोई चीज पढ़ता था सुनता था तो एक ही बार में उसको कंठस्थ कर लेता था। पर फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, मेरे को ये छोड़ना पड़ा है, मैंने छोड़ दिए। तो जब इस वे होते हैं और नेगेटिव है तो फिर इसको या तो फिर मार्केट में अगर हम खाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर हर्ज है तो फिर थोड़ा सा इससे प्रकाश डाले। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हम ये
0: जी राजेंद्र जी, बिल्कुल आपके दोनों ही सवाल बिल्कुल जायज हैं और डॉक्टर साहब आंसर दे रहे हैं।
2: जी थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। देखिए सबसे पहली चीज ये है, गुटखा जो है इंस्टेंट जो आपको लगता है, जो आपको लग रहा था, ये सब चीजें लग सकती हैं शुरुआती में, लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर इसका आदि हो जाता है तो इसको उसके अलावा और कुछ सूझता नहीं है। तो सबसे पहले ही जानना जरूरी है, देखिए गुटखे का सेवन आप जरूर करते हैं लेकिन आप उसका असर किस किस चीजों पर डाल रहे हैं। आप उसको थूकते होंगे तो उसकी वजह से थूकने से एक तो गंदगी भी होती है और दूसरा जो है यहां तक इन्फेक्शन भी फैल सकता है। उसके अलावा आप जो बोल रहे हैं कि इससे आपको बहुत सारी पॉजिटिविटीज थी, लेकिन वो पॉजिटिविटी थोड़े दिनों की मेहमान है, इसके आगे नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज आपने पूछा माउथ वॉश के बारे में, तो माउथ वॉश के बारे में बता दूं कि माउथ वॉश रूटीन यूज में हमें डाइल्यूशन मतलब पानी मिला के ही करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक माउथ वॉश का इस्तेमाल ना करें, डेंटिस्ट के परामर्श के हिसाब से ही माउथ वॉश इस्तेमाल करें, वो आपसे बेहतर होगा और वो उनकी सुपरविजन में रहेगा तो आपका इलाज और उसका जो असर पड़ता है वो भी बेहतर होगा।
0: बिल्कुल। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं जिन्होंने हमें कॉल्स भी की, व्हाट्सएप भी की, लेकिन डॉक्टर साहब एक वक्त बहुत थोड़ा बचा है हमारे पास, लेकिन एक सवाल कुल बुलाकर मेरे सामने आ रहा है। वो पूछ रहा है कि यदि तंबाकू हम छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद भी क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जो प्रॉब्लम होती हैं?
2: जी जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, बिकॉज तंबाकू का सेवन जैसे हम समय लेके चढ़ता है शरीर में उसी तरह से निकलते वक्त भी वो अपना असर इतना आसानी से छोड़ता नहीं है। तो इसको हम लोग एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहते हैं, जिसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। जब तंबाकू का सेवन जब आदमी कोई भी आदमी अगर छोड़ता है तो सबसे पहले मिनिमम एटलीस्ट 2-3 वीक्स तक उसके अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स दिखती हैं। सबसे पहले जैसे क्रेविंग होती है, क्रेविंग का मतलब ये होता है उसके अंदर अर्ज, मतलब उसके अंदर इच्छा होती है कि अब जब छोड़ दिया है, हाँ जरूरत है अभी इमीडिएटली मैं कुछ उठा के या तो बीड़ी पी लूं, सिगरेट पी लूं या गुटखा खा लूं, तो उसको वो अर्ज होती है। तो वो अर्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको दवाइयों से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो काफी सारी दवाइयां हैं जो डेंटल प्रोफेशनल भी दे सकते हैं, अदरवाइज मेडिकल प्रोफेशनल भी दे सकते हैं इस क्रेविंग को एड्रेस करने के। इसके अलावा बेचैनी होना, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा आना ना, प्यास लगना बहुत ज्यादा, या फिर गले में कुछ फंसा हुआ लगना, तो इस तरह की जो जितने भी विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये सब 3-4 हफ्ते रहती हैं। इसके लिए आपको कुछ

0: स्ट्रैटेजीज जैसे काउंसलिंग आप ले ही रहे हैं, फैमिली सपोर्ट, क्योंकि अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे, एक अच्छी आदत है ये, तो आपके फैमिली के और दोस्तों के सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, उसके अलावा दवाइयों का सपोर्ट, और खास करके खुद समझें, आप जब तक इसको अपने आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे, और ऐसे चीजों का, जैसे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, जैसे हम व्यायाम की बात करते हैं, पौष्टिक आहार की बात करते हैं, अच्छे नींद, मतलब स्लीप प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, सही से सोना, 7 से 8 घंटे सोना, और एक्सरसाइज करना, और बहुत जरूरी एक्सरसाइज करना, इन सब 4-5 चीजों की तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शरीर तो तंबाकू के सेवन से खराब होना ही है। तो आप ये, लेकिन ये लेके चलिए कि एक डेंटल प्रोफेशनल, एक दंत चिकित्सक जो है आपकी मदद कर सकता है, आप उनसे अपने प्रॉब्लम, जो तकलीफ है उसको शेयर करिए, और वो सही तरीके से आपको गाइड करेंगे इस चीज से निजात पाने के लिए।
1: जी, तो आज का हमारा जो विषय था वो था ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। तो आज डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका भी।
1: जी थैंक यू सो मच, और इसी के साथ रश्मि लेती है आपसे इजाजत रेडियो डॉक्टर से। यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi, यानि healthairdelhi@gmail.com पर आप अपना फीडबैक देख सकते हैं, और किस विषय पर आप रेडियो डॉक्टर सुनना चाहते हैं आप वो विषय भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: की वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरे छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश आ चुकी है ते तुसी किस गल दा इंतजार कर रहे हो? चुको अपना फोन, डायल करो साडा नंबर 0181-243-174 ते दसो सानू अपनी फरमाइश। ते इस दे नाल ही जुड़दे हां अपने अगले लिसनर दे नाल। हैलो,

0: हाँ दोस्तों, आ गए हैं अपने स्टूडियो वालों वापस अपनी अगली फरमाइश दे नाल। ते आओ गल करते हैं अपने अगले लिसनर दे नाल। हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम सुखबीर सिंह बोल रहे हैं
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे युववाणी प्रोग्राम दे विच। की फरमाइश लेके आए हो जी तुसी अज?
1: हाँ मैडम, सतिंदर सरताज दा गाना सुनाना था मैडम।
0: क्या बात है जी, ते इस दे नाल ए जरूर दसो कि अज दा संडे तुसी किद्दां सेलिब्रेट कर रहे हो? प्यारी जी फरमाइश नूं असीं पूरी करदे आं, ते एदां ही तुसीं साडे नाल जुड़दे रहो। बहुत वधिया लग्गिया तुहाडे नाल गल करके।
1: ओके मैडम जी, ओके
0: जी।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: मेरा एक जिद्दी गुआंडी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मननु तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब दा बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: एक कहानी है एक हाउसवाइफ ते ओदी अंतरात्मा दी। बिजली दा बिल, करियाना, स्कूल दी फीस, सब हो गया। बन गया बजट?
3: हाँ,
2: 5000 बच गए। ता नवी साड़ी ले लवो?
3: ना, पिछले महीने ही ता लई सी।
2: एक होर?
3: नहीं,
2: पहला बजट बनाओ, फिर छोटियां छोटियां बचतां नू बैंक च बचा के रखो, ते पैसियां नू वध दे वेखो।
3: वड्डी आई।
2: हुण जा भैणे।
4: आरबीआई कहिंदा है
2: वित्ती समझदारी खुशहाल नारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं अमन देव तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं मौजूदा भयानक गर्मी दे मौसम दौरान बेहद सावधानी वरतण अते सरकारी दिशा निर्देशां दी पालना करन दी अपील कीती है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज चोटी दीआं पोजीशनां हासिल करन वाले विद्यार्थियों नाल मुलाकात कीती। उन्हां ने राज दी सिख्या प्रणाली विच हो रहे महत्वपूर्ण सुधारां ते खुशी प्रगट कीती है। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातियां बारे अपने हालिया विवादित बयान ते अफसोस प्रगट करदिआं माफ़ी मंगी है। पंजाब ने देश भर चों तंबाकू सेवन के सब तो घट मामलों नाल जनतक सेहत विच एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो IPL क्रिकेट के फाइनल विच अज अहमदाबाद विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं मौजूदा भयानक गर्मी दौरान बेहद सावधानी वरतण अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करन दी अपील कीती है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच उन्होंने लोगों नूं घर तों बाहर निकलण तों पहलां वध तों वध पानी पीण अते सूरज तों बचा लई सुरक्षा उपा अपनाउण दी सलाह दित्ती।
6: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अनमोल विरासत को सुरक्षित रखने लिए काम कर रही है। उन्होंने एक खुलासा भी किया कि ज्ञान भारत मुहिम के हिस्से वजो छत्तीसगढ़ के मल्हार विच पांडू राजवंश के महारिषि बलावजन नाल संबंधित 6वीं-7वीं सदी दीआं 3 दुर्लभ तांबे दीआं प्लेटां मिलियां ने। प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची विच आयोजित राष्ट्रीय सीनियर अथलैटिक्स फैडरेशन चैंपियनशिप बारे गल कीती। इस चैंपियनशिप विच लगभग 800 अथलीटां ने हिस्सा लिया। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना ते कुलदीप कुमार नूं राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़न लई वधाई दित्ती। उन्होंने गुरिंदर वीर सिंह ते अनिमेश कुजूर नाल गल भी कीती।
7: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़

तू ना समझ सकी, कुछ अणछुहे जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साड़ी कल्यां दी औरात सी पर तू ना समझ सकी।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दुनिया। ते हाँ, गीत तो बाद जाना किते नहीं, क्योंकि गल्लां बहुत सारियां बाकी ने।

जी हाँ दोस्तों, तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो फिल्मी दुनिया ते असी गल कर रहे हैं अनिल बिश्वास जी बारे। फिर वह कोलकाता दियां गलियां तो निकल के वापस आ रही सी ते उत्थे जा के उन्होंने की किया, कोलकाता तो अगे जा के उत्थे उन्हां दी मुलाकात महान कवि काजी नजरुल इस्लाम नाल होई। अनिल दा जिहड़े सी उन्हां दी प्रतिभा देख के ही हर कोई हैरान हो जांदा सी। वह गाउंदे भी सन, तबला भी वजाउंदे सन ते म्यूजिक भी बनाउंदे सन। उत्थे एक दिन एक शख्स आया ते उसका काम देखिया, उन्हों का काम देखिया ते पुछया, बेटे बंबई चलोगे? यानी कि उन्होंने सिर्फ पुछया सी ते अनिल दा ने बिना सोचे हाँ कर दिती। भावें वह नहीं जानते सी कि बंबई कित्थे है, की है, कौन मैनू लैके जा रहा है, उन्होंने बस जाना सी, एक सुपना देखिया सी तां हाँ कर दिती। जदों वह बंबई पहुँचे तो सागर मूवी टोन नामक एक कंपनी सी उत्थे उसके सामने उन्हों का ट्रायल होया। अनिल दा ने उत्थे एक भजन गाया जिसका नाम सी भजमन नारायण। तो जदों उन्होंने वह भजन गाया, गाँवे गाँवे खुद इन्ने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि उन्हों अखा के हंझू आ गए। उन्होंने उस जज्बे को देख के मालक ने तुरंत कह दिता, इस लड़के नू नौकरी ते रख लो। उन्होंने तनखा सीधा 250 रुपये महीने कर दी, जो उस जमाने की बहुत वड्डी रकम सी। उस दिन तो बाद अनिल दा ने कदे पिछे मुड़ के नहीं वेख्या। तो चलो जी सुनते हैं अगला गीत, मिलते हैं गीत दे उस पार, क्योंकि गल्लां बातां बहुत सारियां ने ते टाइम भी साढ़े कोल थोड़ा है, लेकिन गल्लां तां पूरियां करनियां ही ने ना।

0: मेहनत ऐसी करो कि रिजल्ट तो पहले ही पता होवे कि आज ता नवा रिकॉर्ड बनन वाला है। 38 साल तक जिस फ्लाइंग सिख दी रिपोर्ट यानी कि जिस फ्लाइंग सिख दी रिपोर्ट रिकॉर्ड स्पीड कोई भी तोड़ नहीं पाया जिहदी मिसाल सारिया ने दिती, एक सिख वीर ने वह मिसाल जिहड़ी है ना फिर तो कायम कर दिती ते उस रिकॉर्ड नू तोड़ दिता। मैं गल कर रही हाँ जी गुरिंदर सिंह दी। गुरविंदर सिंह ने सिर्फ 10.09 सेकंड दे विच 100 मीटर दी रेस पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिता। ते जो सानू पता होंदा है ना कि हाँ यार मैं कर सकता हाँ, मैनू पता है कि हुण मेरा रिकॉर्ड ना बनन वाला है, ते यही गल हुई गुरविंदर सिंह नाल। रेस तो पहले ही गुरविंदर ने अपने चेस्ट नंबर ते पिछे ना एक टारगेट लिख लिया सी 10.10 सेकंड का, ते जदों रेस खत्म हुई तो स्टॉप वॉच ने दिखाया 10.09 सेकंड। ते रांची विच होए 29th नैशनल सीनियर फेडरेशन कप के फाइनल्स विच जिवें ही गुरिंदर फिनिश लाइन पार करदे ने पूरा स्टेडियम तालियां नाल गूंज उठदा है। यानी कि जिहड़ा सुपना उन्हें वेख्या सी ना वह पूरा भी करके दिखाया। ये सी एक रेस जिसने सारिया का दिल जित लिया। यह 12 साल की मेहनत स्ट्रगल डिसिपलिन ते भरोसे की कहानी। ते अज बन चुके है जी इंडिया का फास्टेस्ट मैन। सारे हुण यही गल कह रहे हैं शाबाश मुंडिया तू तो कमाल कर दिता। ਕਿ ਦਾ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਪੋਟੀ ਸੰਡੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਸੌਂਗ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੌਂਗ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਰਕਾਰ
1: ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ

0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम एंजॉय करो दिल चाहता है ते मैसेजेस दी बहुत चार आ गई है साढ़े कोल। अगला मैसेज है जी गोविंद पूरा सीकर राजस्थान तो, सीकर राजस्थान तो मैसेज आया है। दातार सिंह शेखावत ते संगीता कंवर जी ने मैसेज भेजा है, लिखा है फिल्म रोटी का कोई भी गीत सुना दीजिए। जी बिल्कुल, तुहाड़ी फरमाइश असी पूरी करते हैं ते नाल ही सुप्रेम नमस्कार जी, नमस्कार जी, किसी भी गीत में शामिल करिए। ओके जी, किसी भी गीत दे विच असी तुहानू शामिल करते हैं। ये मैसेज सानू भेजा है विनोद बरासा ते विशाल बरासा जी ने, आपका हर पल खुशियों से भरा रही। अगला मैसेज आया जी कृष्णा पार्क दिल्ली तो, सुखविंदर सिंह जौड़ा ते सिटी दीवाना ते इन्होंने मैसेज सानू भेजा है जी फिल्म ये रात फिर ना आएगी मूवी का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ दे विच मेरा प्यार वो है कि। चलो जी, हाले तक इन्नी फरमाइश असीं पूरी करते हैं, उस तो बाद फरमाइश देखते हैं साढ़े दोस्तों की केड़ी केड़ी आई है। तुसीं जाना किधर भी नहीं है, प्रोग्राम चल रहा है दिल, प्रोग्राम चल रहा है।
1: मर कर भी तुमको जुदा
0: सही किया, मर के भी तुमको जुदा नहीं करेंगे क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है दिल चाहता है।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आ गया। कोई गल नहीं जी, शाम आंदी है फिर रात आ जाती है फिर सवेर हो जाती है, लेकिन शाम दे दौरान जिहड़ियां गल्लां तुहाडे दिमाग दे विच आंदियां ना, मैं समझ सकती हाँ। लेकिन उसे लई तां प्रोग्राम शाम वेले हैगा है, साडा दिल चाहता है जिहदे विच तुसीं सानू अपने दिल दियां जिहड़ियां फरमाइशां ने उह भेज सकदे हो। तां चलो जी देखदे हां अगली फरमाइश साडे कोल कीड़ी आई है।

हिस्टोरिकल फरमाइश आई है आपको, हार्दिक नमस्कार। एक नगमा सुना दीजिए जी। ओके जी, आप वर्ड बड़ा सुना है, नगमा सुना दीजिए। फिल्म चोरी चोरी पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, ये जड़ी फरमाइश सानू भेजी है भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा जी ने। ते कपिल जी ने सानू मैसेज जरूर शामिल करे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन्होंने सानू फरमाइश भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ते अगली फरमाइश असी देखते हैं। सप्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। गीत मैं निकला ओ गड्डी लैके, गदर टू मूवी का जिहड़ा गीत है ये चलाना है। ओके जी, ये फरमाइश सानू भेजी है वेद मिड्डा ते अलका मिड्डा जी ने। ओके जी, फिलहाल असी गीत प्ले कर रहे हैं चोरी चोरी मूवी का, वह गीत पंछी बनो उड़ती फिरो। ये गीत इंजॉय करो ते तुसी भी पंछी दे वांगू अपने दिल दियां गल्लां नू उड़ा दो, यानी ओवर थिंकिंग नू गायब कर दो ते इस गीत नू इंजॉय करो।

बहुत बहुत शुक्रिया जी. असी सॉन्ग प्ले कर रहे हैं सजन रे झूठ मत बोलो तीसरी कसम मूवी दा, जिन्हां ने साडे दोस्तां ने सानू कहा सी, ते बाकी जेडे दोस्त रह गए हैं उन्हां दी फरमाइश भी असी हौली हौली पूरी कर रहे हैं.

आपका स्वागत है कैंट में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिल्म शोले का कोई भी गीत सुना दीजिए। प्रीक्षित रैना ते नाल ही एकता गुड्डू अनीता जी ने सानू फरमाइश भेजी है। ओके जी, नेक्स्ट है प्रोग्राम दिल चाहता है। अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो कोई भी गीत लगा दीजिए। ओके जी, फिलहाल असी गीत लगा रहे हाँ मुकेश जी की आवाज़ के विच। नहीं, भाभी भाभी मूवी का जड़ा गीत है नितिन मुकेश ते अनुराधा जी की आवाज़ के विच। चांदी की साइकिल सोने की सीट।

क्यों आज फिर मैंने उस जिंदगी का सौदा किया। अनींद का सौदा करे ना तू कभी याद आए ना कभी याद हम करें। ना तू कभी मिलने आए ना कभी मिलने हम आए। जिंदगी तेरी भी ऐसी गुजर जाए, जिंदगी मेरी भी ऐसी गुजर जाए। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਮਹਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮ।

जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की ही तो बात है। जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की ही तो बात है। जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है। क्योंकि यही जिंदगी है। सुन दे यहाँ जगजीत सिंह दी एक और गजल, ये जिंदगी।

अजब मुकाम पे ठहरा हुआ है काफिला जिंदगी का, कि अजब मुकाम पे ठहरा हुआ है जिंदगी का काफिला, सुकून ढूंढने चले थे नींद ही गवा बैठे। रात का टाइम हो रहा है ते तुहाडे दिमाग विच चीजा चल रही ने जिंदगी बारे, की होया अज पूरा दिन, की करना है अज सारा दिन, ते जिंदगी जिंदगी जिंदगी यही तो है जिंदगी जिहड़ी सानू सोचन ते मजबूर कर दिंदी है, जिहड़ी हर गल ते सानू यही कहती है रुकना चलदा रहे। एक होर गज़ल सुनते हैं चंदन दास जी की आवाज़ के, आ भी जाओ जिंदगी काम है।

पुराने नगमों की खुशबू में दिल फिर से महक उठता है। हर धड़कन जैसे किसी मीठी आवाज़ से बहक उठता है। ये गीत नहीं लम्हों का जादू है, दिल से हर दिल तक चहक उठता है।

एक रात एक बात लिखूंगा, खुद को दाग तुझे साफ लिखूंगा। हकीकत में तू कभी मिलेगा नहीं, हकीकत में तू कभी मिलेगा नहीं, एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा।

कुछ इस कदर इश्क की आंधी आई हमें बेनाम कर गई, कुछ इस कदर इश्क की आंधी आई हमें बेनाम कर गई, नींद छीन ली चैन उड़ा दिया। ठीक था, नींद छीन ली चैन उड़ा लिया, ठीक था हमें भी तेरे नाम कर गई। हमें भी तेरे नाम कर गई।

0: रहना। सोना ना सितारों का है कहना, ख्वाबों के अंधेरे में न रहना।
1: गम ने हंसने ना दिया, जमाने ने रोने ना दिया। गम ने हंसने ना दिया, जमाने ने रोने ना दिया, इस उलझन ने चैन से जीने ना दिया। थक के जब सितारों से पना ली, नींद आई तो तेरी यादों ने सोने ना दिया।

हम ऐसी कुल किताबें काबिले गौर समझते हैं, हम ऐसी कुल काबितें, हम ऐसी कुल किताबें काबिले गौर समझते हैं कि जिनको पढ़ के दिल इंसान कुछ और समझते हैं। ज़माना इल्म से आगे, बड़े या हालात से आगे, अकबर तो खुद को बस खुशबुए दौर समझते हैं।